हरितुरे मनाणी पुण में भरंगी हरम सहारिया कोठे मुड़वाणिया लै बैठे कर पसारिया जीत करण मन पाव दे गुजन नानी हरिया कर मैं

0: मुस्कल होवे अत भारी हर को नाम की माए उदारी
1: अनुपने चरण करनी करे हर को नाम कोट पापर हरे
0: गुरमुख नाम जपू मन मेरे नानक पाओ सुख गनेरे
1: श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोड़ी बंद न परे हर का नाम जपत निस्तर
1: रंग तिख न बजावे हर का

0: सुख बस है सुत ब्रात मीत बनता संग रस है।
1: प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पौन पाव कमला
0: जे प्रसाद भोग सब रसा सगल।

0: रचे साथ छोड़ झूठ संग मचै
1: सुनो सो अस्थिर कर्म ने जो हो सो दूर पर
0: छोड़ जाए तिसका शरम करे संग सहाय तिस पर हरे
1: चंद ले पोतारे कोई करता पीत पसम संग होए
0: अंधकूप में पतित विक्र

0: पलायन साध संग अमृत गुण गायन
1: साधक संग सर्वथान गम नान साधक संग सफल जनम
0: साधक संग नहीं कछ घाल दर्शन बेटत होत निहाल
1: साधक संग लोकत हरे साधक संग नरक पर हरे
0: साधक संग या हुआ सुहेला साध संग विचरत हर मेला
1: जो इच्छे सोई फल पावे साधक संग ना वृथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदर साध सुन रसै
1: साधक संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ
0: साधक संग न मन ते बिसरे साध संग सर पर निस्तर
1: साधक संग लगे परम मीठा साधु के संकट कट डीठा
0: साध संग भय आज्ञा।

0: से जिन भाई नान जिन प्रभ आप करी।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी किसव परमया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।

0: कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी,
1: कई कोट भाई तीरथ वासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी,
0: कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट विसर होते,
1: कई

0: तरफ उपाय कई कोट पाथर भी रखने पजाए
1: कई कोट पुण पानी बसंतर कई कोट देश मंडल
0: कई कोट शशि अरसु नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सी छतर
1: सगल समग्री अपने सुधार नान जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारी
0: कई कोट राजस्थान सात कई कोट वेद

0: धार अधर रहा वह उकमे उपजय हुकम समावै कर कर देख है अपनी वड्याई नानक सब मह रहा समाई
1: प्रभावे
0: प्रभावे बिन सास्ते राखे प्रभावे।

0: कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे।
1: संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए।
0: संत के दुखन मत होए मली, संत के दुखन शोभाते ही।
1: संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए।
0: संत कृपाल कृपा जे करे, नान संसंग निंदक पीतरे।
1: संत के दुखन

0: जले संत के दुखन सब को चले।
1: संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए।
0: संत दुखी का ताओ को नाही, नानक संत भावे ता ओई भी गत पाए।
1: संत का नंद मात पाई, संत का नंद खंटकन न पाई।
0: संत का

0: संत के दोखी को सब त्यागी।
1: संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा भिकारी।
0: संत का दोखी जन में मरे, संत की दुख ना सुखते टरे।
1: संत के

0: मृतक की लोथा।
1: संत के दुखी की जड़ किछ नाही, अपन बीजा पे ही खाए।
0: संत के दुखी को वर्ण रखन हार, नान संत पावे ताले उबार।
1: संत का दुखी यो बिल लाए जो

0: संत का दुखी सदा सहकाली है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है।
1: संत के दुखी की पुज न आसा, संत का दुखी उतले निराशा।
0: संत का दुख न तिष्ठे कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए।
1: आकृत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई।
0: सब घर तिष्ठो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: उस करो दिन रात से त्या हो सास गिरा।
0: सब कछ वर्त

0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए।
1: मेरे सत बिहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सोहेला कर ले जियो।
1: ठाकुर कारम सा संग बिन से सब संग
0: चरण।

0: मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानू ते सुखी
1: एक पछाने तुझकियो सो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन है निरंजन जानिया
1: अपने आप सुजे तिसकी जानो तिसना बुझे
0: साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत
1: अंगन के तिनके बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वा
0: एक ऊपर जी जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा
1: जिस मन भूख नान तिसे न लागे
0: जिसको हर प्रभ मन चित आवे।

0: अज सुभाए हो वै सो हो ए करने हार पछाने सोए
1: की अजन मीठ लगाना जैसा सत सदिश करना
0: जिस ते उपजे तिस माहे समाए।

0: अनद रूप मंगल सज्जा के सर्व थोक सुनिए घर ताके
1: मेरा जोग में जोगी तप में तपिस्तर ग्रस्त में पोगी
0: जय जय भक्त है सुपाया नानक तिस पुरका किने अंत

0: माहे पूर्यो पूरन सब ठाए,
1: नाना विध कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई।
0: सब घट किसके सब किसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ।
1: नाम के तारे सगले जन, नाम के तारे खंड बैमन।

0: तारी सगले आका
1: नाम के धारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण
0: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में ही सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान
0: कर तू सत सजा की बाणी सत पुर समय समाणी
1: सत कर्म जा

0: सत सत्य
1: आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी
0: सत सत प्रवक्ता सुर सत सत जसंता
1: जनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए
0: दे जिन मान्या कर्ण करावन तन मूल पछान
1: जहाँ कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान किस मन प्रगटाया
0: तिन को हे प्रसन्ना जिस ते उपजिया समय समन
1: बस्त माहिले बस्त गडाई ताका उभिन्ना कहना जाई
0: हार भवेक नारायण मिले नानक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रति ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कह रंगे
0: सेवक की रखें रंका
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे
0: अपने सेवक की सरकार रखे
1: अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई प्रभु के सेवकों को ना पहुँचे प्रभु के सेवक ऊँचे
0: सेवा लाया नानक सो सेवक

0: रे प्राणी जप नानक प्रभ अलक विदानी नाम रतन जिन गुरु मुख पाया तिस किच अवर नाही दृष्टाया नाम रस जो जन तृप्ता ने मंतन नामे नाम समाने बोलो जस जिह बा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदार
1: प्रभ अपने सो रे सुमा
0: जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने

0: पेर अब खद लाए
1: सरम निधान में हर नाम निधान जप नानक दर गए परवान
0: मन प्रभो द्वार के नाई दस ताव दे आवे ठाई
1: ताको बिघन न लागे कोई जाके हृदय बसे हर सोए
0: चलता ती ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: भव बिन से पूरन होए आ

0: शरण गुरुदेव
1: यो रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार
0: मन को पाप न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे
1: हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए
0: संग न चाल तेरे धना तुम क्या लपटावे मूर्ख मनाओ
1: सुत मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता
0: राय रंग माया विस्तार इनते कौ कौ छुटका
1: असस तीरथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी
0: नाम सा नानक पछताना
1: गुर की मत ले याने भगत बिना बो डूबे सियाने
0: हर की भगत करो मन भी निर्मल होए तुम्हारो

0: के संग
1: परे शरण आन सब त्याग अंतर पर गाश अंदिलिब लाग
0: गीत प्या प्रसोई नानक नाम रति सको होए
1: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई
0: जनको प्रभु हो दया सेवक की नौसला निहार
1: बंधन काट मुकत जन भया जन्म।

0: भगत भाय तरिया संसार बिन भक्ति तन हो
1: सीचार
0: सगल दुख का हो वत नाश नानक नाम जपो
1: प्रेम रचो अंतर अंतर सो
0: नेत्रो पेट दर सुख होए मन बिकस साध चरण धोए
1: के मन तन रंग बिल्ला को पावे संग
0: एक बस्त दी जय कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया
1: कहीं न जाए भान करे आ सर्व समा
0: प्रभु बख्शन दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल
1: गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रताप
0: आद पुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
1: वे सोहे पुनीत भगत पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरक भगवान
1: कुंड मुक्त मोक पाए एक निमक हर के गुण
0: अनिक राज भोग बड़े आई हर के नाम

0: मरण को का बिना
1: जब पूरन कत्ता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किसोए
0: अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चितर गुबर किस पूछ
1: नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे
0: आप ये चरजा नानक आप रूप आप ये
1: जन निर्मल पुरख

0: तीस बाँ वह तीस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या
0: जल लागा हरे कहनाए तिसकी आस न बिरथी जाए
1: सेवक को सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई
0: इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार
1: बंधन तोर भय निरवैर अंदर पूजे गुर के पैर
0: ए लोग सुतिए पर

0: जिसमन बहती साच प्रीखिया,
1: मंतन नाम जपो लिवलाए, दुख दरद मन ते बहु जाए,
0: सत्य व्यापार करो व्यापारी, दृगन भय की कुमारी,
1: एकातेक रखो मन माए, नानक बहु न आवे जाए,
0: इस्ते दूर कहाँ को जाए, ब्रे रखन हार दिया,
1: निर्भव जप सगल बो मिटाए, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए,
0: प्रभु राखित सुनाई दुख, नाम जपत मन हो वसु,
1: चिंता जाए मिटे अहंकार, किस जन को कोई न पूछन हार,
0: श्री ऊपर ठाडा गुरसुर, नानक ताके कार्य पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन फेकत उदर श्रीष्ट,
0: चरण कमल जाके आनो, सब दर्शन सुंदर हर रूप,
1: धन सेवा सेवक परमान, अंतर जामी पुरुष प्रधान,
0: इस मन

0: प्रभका नाम जय मह इसका विश्राम देखिया जिस आप दिखाए नानक तीस जन सो जी पाए
1: नंद कट कट व्याप्रिया भगवान
0: धरन माया काश पयाल सर्व लोक पूरन प्रतिपाल
1: पर्वत है पार ब्रह्म जैसी अज्ञात सकर्म
0: पानी बसंतर माहे चार कुंट दे दिसे समाहे
1: नई कोठाओं कर प्रसनान सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमरत में देख शशि हर सूर नक्षत्र में
1: प्रभु की सबको बोले अब डोल न कब हूँ डोले
0: सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई।

0: जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुन है सुबचन सर व्यापी राम संग रचन
0: सत वचन साधु सब
1: जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हाथ।

0: परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच अज दे नाम सिमरन समागम दे अंदर जुड़ बैठ के सतसंगी रूप विच सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम सुखमणि साहब जी का पाठ संगती रूप विच आप जियां ने कीता है। पावन बाणी विचों अज दा ये पावन शब्द आप जी ने बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण कीता। गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन बाणी सुखमणि साहिब जिथे आप जी ने पाठ सरवण कीता है, आओ इस पावन बाणी विचों अज दे इस शब्द दी विचार नाल मन बिरतियां करके जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु महाराज जी की कृपा करके समझाउंदे हन, सत्कार प्यार दे नाल जुड़ बैठ समझण दा यतन करिए जी।
1: कई कोट पाताल के बसी
0: सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पंचम पातशाह जी एक अकाल पुरख परमेश्वर दी उस्तत करदियां और दूसरा इस कुदरत दी गल करदियां सानू महाराज जी समझाउणा चाहुंदे ने। उस्तत करें अनेक जन अंत न पारा वार। अनेक जूना ने इस संसार दे विच जिदी लगभग गिणती 84 लख कीती है, 84 लख जौन उपाई गुरु महाराज की बाणी विच ये बचन आउंदे ने, जिदे विच जिन्ने भी ये जिया जंत ने भावें ओ पशु है पंछी है जानवर है अनंत किस्मां ने जिया जंतां दियां। ते गुरु महाराज जी इस दसवीं अष्टपदी दे विच पंजवें पदे दे अंदर किरपा कर रहे ने। कई कोट पाताल के वासी, पाताल जो इस धरती दे हेठा है, कई ऐसे जीव ने जिहड़े करोड़ां दी गिणती विच ने, बहुत ऐसे जीव जिहड़े करोड़ां दी गिणती विच है। पिछले समय दे विच भी आप जी नाल सांझ पाई सी कि मनुख एक है, इंसान एक है, पर मनुख दी जे अज असी गिणती करांगे ते अज गिणती अरब दे विच है, अरबां दे विच है। इस तरह कई ऐसे जीव ने जिहड़े इस पाताल दे विच ने, पर उन्हां दी गिणती जिहड़ी है उह करोड़ां दे विच है। तो महाराज कहिंदे कई कोट पाताल के वासी, जिहड़े पाताल

सुख बने आए वसया, जिन इच्छा सब पूजन्या, सदा कुर्बान किता गुर विटहो, जिस

तित कर गाव सोहिला सिवरियो सृजनहारो तुम गावो मैं निरभाव का सोहिला हो वारे सोहिला सदा सुख हो राओ नित नित जिड़े संभालियन देखेगा देवनार तेरे दाने कीमत ना वाय ते दाते कमण शुमार संभा सा लिखिया मिलकर भावु तेल दियो सजना सीसणिया जो वैसा सुमेला कर करो पहुंच।

बेस अनेक आपा जकर करते कीर्त हुए सो कर रख उड़ाई तो राव बेस जसिया घड़िया पैर दिते बारी माहुआ सूरज कुरत अनेक नान करते के बेस राग तनासरी मल्ला पहला गगन मैथाल रव चंदी पकवने तारिका मंडल जनक मोती तो मल्ला लो पवन चवरो करे सकल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहत्ता शब्द बाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नैन तो एक सहस मूर्त न एक तोहे सहस पद विमल नेक पद गंध में सह तव गंध चल तमोय सब मैं जोत जोत है सोए तिहदे चानण सब मैं चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए हर चरण कुलम ग्रंथ लो विद्वनो

न जाइए, जियो पिंड साहब तिसदा देखा जा गवाइए, जे लोड़ा चंगा अपना कर पनोनीत सदाइए, जे जरवाना पर हरा जरवेस करे दियाइए, कोर है ना प्रिय पाइए, कोर है ना प्रिय पाइए।

पौड़ी बिन सतगुर के न पायो, बिन सतगुर के न पाया। सतगुर विचार रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सचे से चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन